0: और न अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फरमाबरदार है।
1: अल्लाहु अल्लज़ी

इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था, आज हम भी तुम्हें भुला देंगे और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो।

0: www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.
1: Lahore's number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
2: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।
3: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: तन पाकिस्तान का नाम रोशन करना, जाग जाग जाग जाग पाकिस्तान, जाग जाग।
1: ये आवाज है

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान, FM 92.6.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

0: बहुत बेसिक लेवल पे शायद आपको एक डेफिनेशन अगर देना चाहूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन टू अ लेमैन और टू समबडी हु डजंट नो व्हाट इट इज़, इट वुड जस्ट बी अ स्टडी ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स अक्रॉस बॉर्डर्स. सो यू नो इतने बिग क्वेश्चंस हैं दुनिया के अंदर कि कंट्रीज़ कोऑपरेट क्यों करते हैं, कंट्रीज़ जो हैं वो वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इंडल्ज क्यों करते हैं, दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, इकोनॉमीज कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, कल्चर्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आइडियाज़ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो हम IR के अंदर इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं एंड वी जस्ट डोंट लिमिट आर सेल्व्स टू स्टेट्स. वी ऑल्सो रियलाइज दैट यू नो IR हैज़ बिकम मच ब्रॉडर ओवर टाइम. सो IR के अंदर आप MNCs के बारे में भी पढ़ते हो, आप NGOs के बारे में भी पढ़ते हो, आप ऑर्गेनाइजेशंस जैसे UN है, जैसे इतनी सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यू नो टू अ लार्ज एक्सटेंट सोशल मूवमेंट्स, यू नो इवन इन सेंस आप देखते हो दुनिया के अंदर इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज कैंपेन्स चल रही हैं. ऑल ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ IR बिकॉज दे टेल अस अबाउट वॉट द यू नो वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट. सो देर इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू इन द वर्ल्ड, यू नो नॉट जस्ट विद इन योर ओन कंट्री, थ्रू आउट द ब्रॉडर वर्ल्ड इज बेसिकली यू नो फॉल्स इन द रियल्म ऑफ IR.
1: Thank you, teacher, for giving us a brief introduction of IR. I'm sure students who don't know about it will be interested to learn. And now, my question is, with so many global events folding every day, how does studying IR helps us make sense of what's happening around us?
0: So we have tools in IR. Just like, you know, in every subject, you have various tools which help you understand, you know, how to make sense of the various things that are happening. इसी तरह IR में हमारे पास कुछ tools होते हैं, जैसे हम levels of analysis को use करते हैं, जिसके अंदर domestic आ जाता है, individual आ जाता है, systemic आ जाता है. So what we discuss in that is कि एक individual level पे, for example, अगर एक leader है तो वो किस basis पर decision making कर रहा है, and you can understand कि एक leader जो कि decision making के role पर है, he's the one or she's the one who's making those decisions. So does it come down to that person? You know, their own experiences, their own personality, their own, you know, whatever they have been through and whatever the agenda they have put forward. Personality is very important. So even if you look at the world today, if you just compare contrasting personalities, to aap US ke presidents ko dekh lo, you know, Obama had a different personality. You want to understand, you know, foreign policy decisions that, you know, US undertook during Obama's presidency. If you're using an individual level of analysis, you would see how his personality shaped that. Similarly, you know, Trump has a different personality. Joe Biden has a different personality. So you look at their own personalities and how that influences decision making. So is tarah different levels aur hain. Hamare paas ek domestic level aa jata hai, jo hume batata hai ki ek state ki internal characteristics kya hain. So वो स्टेट पावरफुल है, वीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, वो उसकी इकोनॉमी जो है वो कितनी ज़्यादा ओपन है, कितनी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है दुनिया के साथ, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके डोमेस्टिक फीचर्स हैं. सो यू नो दे ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ अ स्टेट इज एक्टिंग इन द वर्ल्ड. उसके अलावा जो मैं आपको कही थी, थर्ड एक कॉमन लेवल है जिसको हम यूज करते हैं, वो सिस्टेमिक है. दैट टेल्स अस के अलायंसेस क्या हैं दुनिया में, पोलैरिटी क्या है दुनिया में, कितनी सुपर पावर्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, स्टेट्स के अलायंसेस कैसे हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे हैं. बिकॉज इफ यू सी, कंट्रीज विल टेंड टू फॉलो देयर एलाइज एंड स्पेशली इफ देयर इज अ यू नो वीक स्ट्रांग रिलेशनशिप देयर. सो वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है हमारी IR की अंडरस्टैंडिंग को, इवेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को.
1: थैंक यू सो मच मिस फॉर दिस इनसाइटफुल आंसर. अब हम सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This
2: is 92.6.
3: Welcome back, everyone, to FM 92.6 UCP Ki Duniya. Today, I'm here for Faculty Awards, and hamare saath hamari guest hai Miss Aisha Naseem. And we were discussing ki IR ke andar agar hum dekhen to global events ko hum kaise understand kar sakte hai ki hamare aas paas jo kuch ho raha hai usko IR ke view se kaise explain kar sakte hai. Okay, Miss, next mera question hai ki jaise state mein central government hoti hai, but IR mein koi central authority nahi hai, to decision making kaise hoti hai aur problem को सॉल्व कैसे किया जाता है?
4: अच्छा, सो मुस्कान, दिस इज अ वेरी कोर यू नो इशू और टॉपिक इन IR जो हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पर जिस चीज के साथ ग्रैपल करते हैं और फिर लेटर ऑन आप देखते हो कि हर प्रॉब्लम हर इशू को टैकल करने के अंदर यही क्वेश्चन जो है ये अराइज करता है. बिकॉज यू आर वेरी राइट कि हमें एक डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर क्लियर कट एक गवर्नमेंट नजर आती है जो कि हमारे लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, एंड व्हेन वी डोंट फॉलो दोज रूल्स तो एक सिस्टम है जो हमें पनिश करता है, यू नो, एक कोर्ट सिस्टम, एक पुलिस फोर्स एटसेट्रा. बट इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है. इट इज वेरी ऑब्वियस, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, IR की एक टर्म है एनआरकी, एंड एनआरकी is basically refers to this phenomena that when there is no central authority, you know, what happens and, you know, how do states interact. So, aap iske andar dekhoge ke clear cut hai ke there is no authority. You know, you see states breaking laws and, you know, jisko hum international law kehte hain, usko states break bhi karti hain, lekin they get away with it and, you know, some get punished and some don't get punished. So, aisa koi universal hume system nahi nazar aa raha jo ki ek local government, for example, karti hai. एंड येट डिस्पाइट दैट हम ये भी देखते हैं कि कोऑपरेशन हो रही है, कुछ चीज़ों के अंदर लॉ मेकिंग जो है वो हो भी रही है और उसको फॉलो भी किया जा रहा है. तो ये जो कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम है, ये एक सेंट्रल आइडिया है जो कि IR ने, आप कह लो इकोनॉमिक्स से भी हमने बोरो किया हुआ है. आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द बिगिनिंग कि IR एक बहुत इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. तो जहां पे आप IR के बारे में पूछ रहे थे कि IR क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो IR इंटरडिसिप्लिनरी है. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट आइडियाज को हम इकोनॉमिक्स से भी बोरो करते हैं, सोशियोलॉजी से बोरो करते हैं, साइकोलॉजी से बोरो करते हैं. वो जो मैं अभी आपको इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस बता रही थी, इट इज सो मच लिंक टू साइकोलॉजी एंड psychology of leaders. So coming back to this problem that you just asked about, to wo ek collective goods problem hai jiska ek jiski ek basis economics ke andar bhi hai ki aap kaise ensure karo ki wo cheeze jo sabke fayde mein hai उनको स्टेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि यू नो उनको इसके अंदर कुछ स्टेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट ना भी कर रही, राइट? जैसे फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल देख लेते हैं. अब आप देखते हो कि क्लाइमेट चेंज, यू नो, बिकॉज इट इज सच अ हॉट टॉपिक राइट नाउ एंड इट इज बींग डिस्कस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, एटसेट्रा. सो इट्स समथिंग दैट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. अब यू नो द एयर दैट वी is for everybody, right? हम वहां पर तो वो borders नहीं बना सकते air के अंदर जो हमने land के अंदर बनाए हुए. So it's like every country is going to contribute, you know, with the level of pollutions, etc. तो वो हर कंट्री उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्री ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ कंट्रीज कम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. बट इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स एवरीबडी, राइट? सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल कह दो कि नहीं, मैं तो इतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहा एंड सो आई डोंट नीड टू यू नो डू समथिंग अबाउट इट, इट्स नॉट रियली देयर बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू. आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल देख लो, अभी ये जो हमारे फ्लड्स आए थे रिसेंट, उसके अंदर हमारा यही एक यू नो हमारा ऑफिशियल नैरेटिव था दैट we have not contributed as much to global warming, but you know these floods have been caused by global warming and we have paid the cost of it, in the sense ke kitni lives lose hui hain, kitni hamari economy suffer ki hai. So yahi baat aagi ke chahe koi state uske andar contribute kar rahi ho, chahe na contribute kar rahi ho, aapne wo provide karna hi hai good, aur aapne ensure karna hai ki sab countries jo hain wo uske andar contribute kare, kyunki it is a global thing. And if for example one state says ke nahi ji hum to नहीं इसको फॉलो करेंगे, तो वही बात है, एयर कॉमन है, इट इज स्टिल गोइंग टू इफेक्ट other people. So how are you going to deal with it? Iske bhi basic principles hain. Hum bahut basic level pe dominance padhte hain. Principle of dominance usko kaha jata hai. Phir principle of reciprocity hai. Principle of, you know, identity hai. Briefly, I'll just mention ki in sab ke andar kya hota hai and then we can move on. Dominance ka principle kehta hai ki jo powerful states hain, wo less powerful states ko, you know, dictate karti hain. So jaise hume, for example, different countries kahein ki you should do something about climate change and because a powerful country is saying it, we will follow it. ठीक है, वो डोमिनेंस होगी. रेसिप्रोसिटी होगी कि वो हमें दूसरे कंट्रीज को इंसेंटिव दे दें कि जी अगर आप ये करेंगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे. सो आप हमारी बात माने, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे. सो वो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है कि तुम भी करो ये, तुम ये चीज करो, मैं ये चीज कर रहा हूं, तो एंड वी विल कलेक्टिवली, यू नो, बेनिफिट फ्रॉम इट. और देयर इज आइडेंटिटी. यू रियलाइज दैट, यू नो, देयर इज समथिंग व्हिच यूनाइट्स यू, व्हिच अफेक्ट्स एवरीबॉडी एंड यू कंट्रीब्यूट टू इट. सो ये प्रिंसिपल्स हमें एट वर्क नजर आते हैं इन एवरीथिंग, in every event, in every issue that is going on, and somehow one way or the other in principles ko use karke hame duniya mein nazar aa raha hai ki states are cooperating and interacting positively on various issues that affect all of them.
3: क्योंकि मैं देखें, आपकी बात से मुझे याद आया कि ब्रिक्स में इंडिया, रशिया, ब्राज़ील सब एक साथ मिलके अपनी ट्रेड और इकोनॉमी बेटर करने के लिए काम करें. हालांकि चाइना के इंडिया से प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के रशिया से भी हो जाते हैं, तो लेकिन फिर भी वो अपनी इकोनॉमी बेटर करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं.
4: सो दैट्स राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देयर इज समथिंग व्हिच इज यूनाइटिंग यू, राइट? कोई कॉमन इंटरेस्ट है जिसको आप फाइंड कर सकते हो और आप फिर यू नो वन स्टेप फॉरवर्ड. अगर हम एक लिबरलिज्म की थियरी है आईआर के अंदर उसके तरफ आ जाए तो वो यही कहती है कि कंट्रीज का अपना भी फायदा है कि वो आपस में ट्रेड करें, इस तरह के अलायंसेस बनाएं जैसे कि आपने ब्रिक्स की एग्जांपल दी, बिकॉज यू नो इट इज इन एवरीबॉडीज बेनिफिट. तो अगर आपके कोई एरियाज ऑफ कंटेंशन भी हैं, अगर कोई एरियाज ऐसे भी हैं जिसके अंदर आप क्लैश कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप आपस में इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करोगे, ट्रेड करोगे, उसका फायदा आप दोनों को होगा. सो इट्स नॉट अबाउट यू नो हु गेन्स मोस्ट, इट्स जस्ट अबाउट द fact that you should look there at the fact that you are gaining from it. So isliye hum apni interest ki baat karte hain ki ye bhi hamari interest mein hai ki hum aapas mein is tarah ke blocks banaye aur trade kare. This is beneficial for individual states that are a part of it.
3: थैंक यू सो मच मिस, आपने बहुत से पॉइंट्स क्लियर कर दिए मेरे भी और आई एम श्योर जो ऑडियंस है उनको भी अच्छे से समझ आ गई होगी. नाउ वी विल टेक अनदर ब्रेक. सुनते रहिए FM 92.6 UCB की.

0: Welcome back, everyone. You are listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya. I have Miss Aisha Naseem with me, and we were discussing ke agar state mein koi central authority nahi hai, to phir decision making kaise hoti hai. And we had a very insightful discussion. Hume bahut si cheeze clear hui. Now, Miss, aapne liberalism ki baat ki thi. So, usi se mujhe theories yaad aayi because I have also studied approaches and theories of IR. To aapko kya lagta hai ki kaun si theory most helpful hai understanding today's events?
1: So this is a very relative question, ठीक है? So इसका एक कोई जैसे fixed answer जो है वो नहीं है. So let me think about which theory, for example, I would answer as being most relatable. Why don't you tell me, Muskan, since you just mentioned कि आपने भी theories पढ़ी नहीं है, what is your approach towards different theories that you've studied? And which one do you think is most adequate?
0: Okay, first of all, realism ko bahut zyada relate kiya jata hai anarchy se, aur uske core ideas bhi yahi hain. Phir liberalism, in dono ko dominant samjha jata hai. But jab when I studied constructivism, to tab maine dekha ki wo world ko bilkul objectively nahi dekhta, ekdam different tarike se perceive karta hai. For example, ki agar aapke samne ek chair hai, to constructivist ke according har kisi ka apna opinion hoga ki aapne ek chair dekhi, but jab aap imagine karoge to aap usko different, har koi differently imagine karega, ki koi use moving chair ke taur pe imagine karega, koi classroom chair ke taur pe imagine karega. To ye sirf depend karta hai ki aapne us चीज को कैसे परसीव किया. और इसमें मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे कंट्रीज लाइक जापान और नॉर्वे, वो लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाते, हालांकि बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग वो कहेंगे कि दुनिया में अनार्की है और हमें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ही चाहिए. बट उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी सेट कर लिया, उनके इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स, बिकॉज उनकी एक हिस्ट्री रही है, उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस था हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग्स को लेकर कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स परसीव नहीं करेंगे. आई थिंक कंस्ट्रक्टिविज्म हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि किसी चीज का बैकग्राउंड क्या है, और हमें बिल्कुल उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देखना चाहिए.
1: अच्छा, बिल्कुल. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी. सो क्रिटिकल थ्योरी जो है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, जैसे आपने शुरू किया कि हम ज्यादा फोकस करते हैं रियलिज्म के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर, एंड इन फैक्ट वी कॉल देम द मेन स्ट्रीम थ्योरीज. सो वो वही थ्योरीज हैं जो कि बहुत अरसे से आईआर का पार्ट हैं, और उनको बहुत अरसे से, मतलब सेंचुरीज ओल्ड इनके ट्रेडिशंस हैं, इनकी रूट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, और उन्हीं को फिर हम अडॉप्ट करते हैं इन एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड. तो मेरी जो इसके अंदर एक अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. आई फील यू नो दैट क्रिटिकल थियरी इज सॉर्ट ऑफ मोर एडिक्वेट. अब उसके देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट. मुझे लगता है रियलिज्म और लिबरलिज्म जो है वो तो बहुत, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि वो बहुत एक एक्सेप्ट कर लेती हैं सिस्टम को एज इट इज, और फिर उसको एक्सप्लेन करती हैं. दे डोंट आंसर दिस बेसिक क्वेश्चन कि वो सिस्टम आया कहाँ से. ठीक, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे, कुछ कंट्रीज जो हैं वो पावर के पीछे हमें भागते हुए नजर आते हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं बिल्कुल ही नजर आते हैं, दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, ऑन देयर इंटरनल सिस्टम्स, ऑन डेवलपमेंट, एंड दे प्रायोरिटाइज दैट ओवर फॉर एग्जांपल मिलिट्री एंड डिफेंस. सो देन एट द सेम टाइम यू सी डिफरेंट अदर कंट्रीज विच आर ओनली रनिंग आफ्टर यू नो मैक्सिमाइजिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज. सो वॉट एक्सप्लेन्स दैट? इसका मतलब है कि हर स्टेट सेम नहीं है, और हर स्टेट जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट जो है या फिर डिफरेंट तरीकों से उन इंटरेस्ट को फॉलो कर रही है. तो मुझे लगता है कि हम सबको यू नो फ्रॉम द ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज को, यू नो पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, वी नीड टू फोकस मोर ऑन क्रिटिकल थियरी, एंड वी नीड आर स्कॉलर्स, आर रिसर्च टू अडॉप्ट दैट थियरी इज वेल. क्योंकि क्रिटिकल थियरी बेसिकली क्या करती है कि इट आस्क दीज क्वेश्चंस के किसकी इंटरेस्ट सर्व हो रही हैं, किसके पास पावर है, किन की वॉइसेज हैं जिनको साइलेंस किया जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम इस दुनिया को डिफरेंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि एक सिस्टम मोर इक्वालिटी के ऊपर फॉर एग्जांपल बेस्ड है, जहाँ पे जस्टिस है या नहीं. तो आई बिलीव दैट इट गिव्स अ मोर ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर, एंड इट आंसर्स अ लॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी आईआर आई कहाँ से है, और ये प्रिंसिपल्स आए कहाँ से जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू नो टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. So you've already mentioned constructivism. I will just go one step ahead and I will mention post-colonialism. And post-colonialism is a theoretical framework which I have adopted in my research. So what it basically says is ki agar aapne duniya ko abhi understand karna hai to aap history ko dekhen, aap legacies of colonialism dekhen, which you know all of us actually in Pakistan are aware of, because you know we have been a formal colony ourselves. British jo the wo rule kar rahe the Indian subcontinent ke upar, aur ek set kisam ka pattern jo tha wo unhone introduce kiya, aur uske baad wahi system jo hai wo humne follow kiya even when they left. So what post-colonialism says is that it is very relevant ki aap international politics ko un legacies ke through explore karo jo colonialism aur imperialism ki hai. So they are not just something of the past, they shape today's global inequalities, patterns of conflict and all the categories that we even used to study aaya. जैसे आप देखो डेमोक्रेसी के ऊपर कितना फोकस है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट्स जस्ट वन एग्जांपल. आप और देखो हम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इकोनॉमिक यू नो कैपिटलिज्म के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं एंड वी यूजली डोंट नो वेयर दीज आइडियाज़ आर कमिंग फ्राम. और कुछ जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट समहाउ हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं एंड वी डोंट लुक एट दोज हिस्टोरिकल things which have been a part of our history and which have been a part of you know our development, and then we can't really understand this. Theek hai, so ye jo international system hai isko post colonial scholars kehte hain ki this has been built through processes of conquest, resource extraction, cultural domination, etc. Just briefly agar iski hum koi example dekh le to aap dekh sakte ho hum acha Israel Palestine war ko hum dekhte hain, agar hum usko sirf as a security issue ek to एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यू नो इट इज इट जस्ट अ सिक्योरिटी इशू, और इज देयर यू नो अ डीपर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और अंडरलाइंग इशूज देयर. जैसे आई विल लिंक इट यू नो विद द कलोनियल हिस्ट्री इन द सेंस के डिविजन ऑफ लैंड कैसे हुई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन कैसे हुई, वो सारी बेलफोर डिक्लेरेशन के साथ लिंक्ड है जो कि कलोनियल प्रैक्टिसेस हैं ब्रिटिश की. सो यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से प्रॉब्लम्स डेवलप हुई. इसी तरह अगर आप अफ्रीका को देखो, अफ्रीका यू नो इज अ वेरी रिच कॉन्टिनेंट इन द सेंस ऑफ दैट इट हैज अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, येट आप देखते हो कि इट इज द पुअरेस्ट यू नो मोस्ट अनस्टेबल मोस्ट यू नो वीकली गवर्नड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो पोस्ट कोलोनियलिज्म हमें ये बताएगी कि यू नो कोलोनियल पावर्स ने कैसे रिसोर्सेज वहां से एक्सट्रैक्ट किए और फिर किस तरह से अपने आप को डेवलप किया. एक इतनी फेमस बुक है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका. सो इट इज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स दैट यू नो ये जो रिसोर्स कर्स है अफ्रीका की, it is not just something which is you know brought upon them by themselves, it is something which has been imposed on them, it is a post-colonial legacy of exploitation or underdevelopment. aur ye hame kya cheeze hain, ye sari examples batati hain ki there is a way forward. matlab thodi si ek critical theory ki ye advantage hai ki wo aapko ye bhi batati hai ki hum system ko theek kar sakte hain aur kaise kar sakte hain. so for example post-colonialism kahegi ki aap decolonize kare, जो आप लोगों के लिए नई चीज़ें वर्क कर रही हैं उनको छोड़ें और जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उनको अडॉप्ट करें. इवन लाइक माय करंट रिसर्च, जस्ट ब्रीफली आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई एम लुकिंग एट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम अ पोस्ट कोलोनियल पर्सपेक्टिव. तो मैं पाकिस्तान को स्टडी कर रही हूँ, तो मैं ये डिस्कवरिंग दिस एंड आई एम फाइंडिंग आउट मोर अबाउट इट एवरी डे कि हमारे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, फ्लड मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, वो कोलोनियल टाइम्स से चलते आ रहे हैं और हमने उनको चेंज नहीं किया और हम अभी तक उसी तरह से मैनेज करते हैं वाटर को जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज हमें बता के गई. बट देवर देयर फॉर अनदर पर्पस एंड वी आर अ स्टेट एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज पीपल. यू नो देवर देयर फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा, जो भी हम एक टेम्प्रेरी रूल के साथ एसोसिएट करते हैं. सो द पॉइंट इज कि अगर आप इन चीज़ों को रियलाइज करो और स्टडी करो तो आप लॉज को, पॉलिसीज को, इंस्टीट्यूशंस को डीकॉलोनाइज करो और आप उन प्रोसेसेस की तरफ जाओ जो आपके कॉन्टेक्स्ट की तरफ ज्यादा सूटेड है. सो देयर इज होप फॉर अ चेंज.
0: थैंक यू सो मच मिस. और आपकी बातों से मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में हर प्रॉब्लम के पीछे कॉलोनियल लेगेसी है, बिकॉज एवरी कंट्री वाज अ कॉलोनियल एट सम टाइम.
1: नो, इट्स नॉट दैट, यू नो, लेट्स नॉट टेक द एग्जांपल और जस्ट लर्न द एग्जांपल और टेक अवे कि यही है कि सारी गलती उनकी है. आई थिंक दैट वुड आल्सो बी रॉन्ग. वी शुड रियलाइज आवर ओन मिस्टेक्स एज वेल, बट आई मीन देयर इज अ लेगेसी एंड इट शुड टेल यू कि आप कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट डिफ्लेक्ट कर दें ब्लेम सारा, दैट वुड आल्सो बी रॉन्ग.
0: थैंक यू सो मच मिस, एंड आपके इतने डिटेल्ड आंसर से मुझे रियलाइज हुआ कि क्रिटिकल थ्योरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म आल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेरी डिटेल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ आईआर, नॉट जस्ट बेसिक थ्योरीज. तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग टू अस, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस आयशा नसीम टू बींग आवर गेस्ट फॉर टूडे. इट वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड लर्निंग टू होस्ट हर. वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर गेस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. FM 92.6 UCP की दुनिया. अल्लाह हाफिज़.

0: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर रابطہ कीजिए।
1: Are you tired of feeling

0: FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आप लोगों ने ज्वाइन किया है एक्सक्लूसिव लेजेंड्स को। ये ब्रंच शो है जो आप लोगों के साथ मौजूद होता है, और हम किसी एक ऐसे लेजेंड को डिस्कस करते हैं जिसने पाकिस्तानी इंडस्ट्री और पाकिस्तानी आर्टिस्ट का नाम इतना ऊंचा किया होता है कि हम लोग उनको हिस्ट्री में और हम लोग उनको फ्यूचर में भी हम उनको डिस्कस करते रहते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि ये जो है ये एक म्यूज़िकल जो हमारी जो आज बेसिकली जो हम जिस लेजेंड को डिस्कस कर रहे हैं वो म्यूज़िकल लेजेंड होगा, और इस लेजेंड का हमने गाना भी लगाया। और अगर आप लोगों ने पहचान लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहचान सके तो फिर मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम जिस आर्टिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम है नूरी। और यस, नूरी द बैंड, क्योंकि जो हमारे फॉर्मेट्स से वाकिफ़ हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि हम लोग एक हफ़्ते किसी एक्टिंग मतलब कि इंडस्ट्री में से किसी को चूज़ करते हैं, और किसी और जो नेक्स्ट वीक होता है हम लोग डिस्कस करते हैं किसी म्यूज़िकल लेजेंड को। और लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्टर को, नुमान एजाज को। और इस हफ्ते जो है हम लोग म्यूज़िकल बैंड जो है नूरी उनको डिस्कस करेंगे। और उनका सबसे मुझे आई डोंट नो दिस समथिंग अबाउट द फैक्ट कि जिनका मुझे पता चलता है कि वह लाहौरी हैं तो मुझे थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है या मुझे थोड़ी ज़्यादा खुशी होती है। आई डोंट नो, ये होती है चीज़, एटलीस्ट मेरे साथ होती है। टेल मी इफ़ एनीवन एल्स फील्स दैट। और तो मैं अगर आप लोगों को नूरी के रिलेटेड बताऊं तो नूरी बैंड इज़ बेसिकली देन अगेन लाहौर बेस्ड बैंड है, जो लाहौर से जिसका स्टार्टअप हुआ, और दोनों भाई इन्होंने इकट्ठे इस बैंड का स्टार्ट किया। और उनको बेसिकली कहा जाता है कि 21st सेंचुरी का जो पॉप रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान जो लेकर आए थे वो नूरी बैंड लेकर आया था। और अली नूर इज़ वन ऑफ द मेंबर्स। ही इज़ 31 years old एंड ही इज़ अ ट्रेंड लॉयर, विच इज़ लाइक वही बात है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एक्टिंग या जो म्यूज़िकल फील्ड में जाते हैं वो सिर्फ उनको सिर्फ यही करते हैं और वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, ना एवरीथिंग लाइक दैट। लेकिन दिस प्रूव्स दैट यू नो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड एजुकेशन को किस तरह से वो साथ लेके चलते हैं। और उसके अलावा जो सेकेंड मेम्बर है वो अली हमज़ा है, ही इज़ 28 एंड ही इज़ एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट एक बहुत बड़े बिजनेस स्कूल से लाहौर के ही। तो वही बात है कि वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेट आर्टिस्ट, हमें लगता है कि अच्छा यू नो दे आर एन आर्टिस्ट तो फिर इनकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होगी या पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट, लेकिन विच इज़ टोटली रॉन्ग। और वही बात है कि दे प्रूव अस रॉन्ग एंड आई लव सीइंग दैट, बेसिकली बीइंग समवन हु लव्स के पढ़ाई जो है ना उसको कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, और सारी एक्टिविटीज़ करें, सब कुछ इंजॉय करें, अपने टैलेंट्स को भी एक्सप्लोर करें एंड एवरीथिंग, लेकिन पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। Always keep that as your first priority. Or being an RJ in a campus radio, I think ये मेरा ethically या जो मेरे morals में आता है that I should you know explain all of these things to you. उसके अलावा हम आगे चलें तो हम उनको बताते हैं, आप लोगों को बताते चलूँ मैं कि वही बात है कि टिपिकल प्रोफेशनल पाथ जो है इनकी भी वही स्टोरी है कि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग देम के यू नो वेल एजुकेटेड पाकिस्तानीज हैं तो यू नो दे विल कंटिन्यू देयर एजुकेशन लाइक दिस, और विच इज़ वेरी नॉर्मल। ये हमारी सोसाइटी की एक लेकिन उनके जहन में ये मिथ है कि अच्छा अगर इतने पैसे लगा रहे हैं इन पे और इतने यू नो आई नो देर आर पीपल जिनको ये कहा जाता है कि अच्छा यू नो हम इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में आपको भेज रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर आप लोगों को इसी को ही कंटिन्यू रखना चाहिए, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि द फैक्ट के ये जो टैलेंट्स होते हैं ऐसे सिंगिंग एंड एक्टिंग और इस टाइप के छोटे छोटे टैलेंट्स होते हैं, ये वाले जो टैलेंट होते हैं ना ये हर किसी में नहीं होते, लाइक हर किसी में डिफरेंट होता है, लेकिन ये वाली जो चीज़ होती है ना बहुत कम लोगों में होती है। और अगर इफ़ यू वॉन्ट एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ टैलेंट्स तो फिर ये यू आर वेस्टिंग समथिंग दैट अल्लाह हैज़ गिफ्टेड यू, और इसको यूटिलाइज करना चाहिए बेसिकली। उसके अलावा उनके साथ भी यही, उनकी भी यही स्टोरी थी कि यू नो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग देम कि वो यही करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और जो उनका पैशन था वो था म्यूज़िक, और विच इज़ लवली कि दोनों भाइयों का इकट्ठा ही ये पैशन था और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लाइक मोस्टली यही होता है कि घर में एक होता है जो बहुत पढ़ाकू बहुत पढ़ने वाला बच्चा होता है और
ساری زندگی جو ہے نا اس جو باقی جو دو یا تین یا ایک یا جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو پھر یہی ساری زندگی تانے ملتے رہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو دیکھا ہے یا اپنی بہن کو دیکھا ہے کہ کتنا پڑھتا ہے یا کتنا پڑھتی ہے اینڈ آل دیٹ. تو یہ اچھی ایک ایگزامپل ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ہی مطلب کہ اتنا پیشن انہوں نے اکٹھے ہی اسٹارٹ کیا اور اکٹھے ہی کام کرنا شروع کیا اس کے اوپر. اس کے علاوہ جب یو نو بینگ کالج اسٹوڈنٹس اتنے لائک یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ان کلکس آپ ایک بہت بڑا یا بہت اچھے آرٹسٹ بن جاؤ. دا بیسٹ پارٹ از کہ اس ٹائپ کے اور وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ, لیکن چاہے آپ جتنے بھی بڑے بچے کے سوری جتنے بھی بڑے آدمی کے آپ بچے ہو نا, آپ نو میٹر واٹ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اور ہاں آپ لوگوں کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں کہ آپ زیادہ ایکسپیرینس کر سکتے ہو یا پھر جلدی آپ کسی اچھی جگہ پہنچ سکتے ہو, لیکن کام ان کو بھی اسکریچ سے ہی کرنا پڑتا ہے. بلکہ آئی بلیو کہ ان کے اوپر تھوڑا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ اچھا آپ کے پیرنٹس اتنے ٹیلنٹڈ ہیں یا آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں, تو پھر آپ کا بھی بنتا ہے کہ آپ اچھا کام کرو. تو ہم ان کے بارے میں اور مطلب کہ ڈسکس کریں, تو انہوں نے اپنے جو پیشن ہے اس کو پروفیشنلی انہوں نے اس کو اس پہ کام کرنا شروع کیا. اور نوری کو لائک اٹ از سیڈ کہ دے ہیو ٹک دا مارکیٹ بائی اسٹارم. اس کا مطلب یہ ہے بیسکلی کہ جو کام ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ slowly and surely, لیکن there are some artists جن کی آواز میں جادو ہوتا ہے. اینڈ نوری از ون آف دوز بینڈ کہ وہی بات ہے کہ دونوں بھائی ہیں تو بچپن سے ردمز اینڈ ایوری تھنگ اس پہ اتنی پریکٹس کی ہوگی کہ دونوں کی آواز ایک دوسرے کے اندر بالکل خوبصورت طریقے سے مرج ہو گئی ہوگی اور دے وڈ ساؤنڈ گڈ ٹوگیدر. تو انہوں نے اکٹھے اس مطلب کہ جرنی کو اسٹارٹ کیا اور ان کو ان کے جو البم جو سب سے پہلی البم آئی تھی ڈیبیو البم وہ سنو کہ میں ہوں جوان سوری دس واز اے ریکارڈ بریکر فار ڈیبیوٹنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان پاپ میوزک. اور مطلب کہ اس زمانے میں آئی ریممبر کہ لائک بہت سارے آرٹسٹ تھے اور جس ٹائم پہ ان لوگوں نے اسٹارٹ کیا اپنا سفر ہے میوزیکل سفر, لیکن وہی بات ہے کہ دے آر سم پیپل ہو آر ڈیسٹنڈ ٹو میک اٹ سم تھنگ ڈفرینٹ اینڈ سم ون ڈفرینٹ. اور ہر کسی کو یہ اللہ تعالیٰ اتنی عزت نہیں دیتا اور ان کو اتنی بڑی اپرچونیٹی ملی اور انہوں نے اس کو اچھے سے یوٹیلائز کیا. تو آئی تھنک دس از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ. اور ہم لوگ آگے فردر ان کی ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ دیو بن ڈوئنگ اور اب پریزنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن تب تک ہم چلتے ہیں میوزیکل بریک پہ, کیونکہ سب سے زیادہ مزہ تبھی آتا ہے جب آپ کسی میوزیکل بینڈ کو یا کسی آرٹسٹ کو ڈسکس کر رہے ہو اور ساتھ آپ ان کے گانے بھی انجوائے کرتے رہو اور آپ اسی زمانے میں چلے جاؤ. تو اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6 اینڈ انجوائے دس بیوٹیفل میلوڈی.

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आप लोगों ने ज्वाइन किया है ब्रंच शो को जिसका नाम है एक्सक्लूसिव लेजेंड्स, और मैं हूँ शो के साथ फातिमा अहमद। और हम लोग आज जिस आर्टिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम है, उस बैंड का नाम है बेसिकली नूरी। और नूरी एक नामवर अच्छा खासा बैंड है कि लाइक हमें ज़रूरत नहीं है कि मैं मैं उसको स्क्रैच से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। एवरीबडी नोज नूरी। और देयर वाज अ टाइम कि मैं आई डिडंट नो नूरी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि आई वाज वेरी यंग। एंड जब आप व्हेन यू गेट द परमिशन कि अच्छा आप गाने सुन लो, या फिर आपको जब वो परमिशन मिलती कि अच्छा आप टीवी पे गाने देख लो, तो फिर तब मुझे पता चला कि नूरी इज समवन। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि अगर आप लोगों को नहीं पता था। उसके अलावा हम नूरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा एक स्टूडियो आता है और उसमें बहुत सारे गाने होते हैं, हर आर्टिस्ट के गाने होते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि नूरी जो है वो ऑलवेज लाइक पिछले सीजन में तो दे वर दी मोस्ट हाईलाइट थिंग अबाउट दैट स्टूडियो, क्योंकि हर गाना जो था वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस उन्होंने उसको बाइंड किया था। उनका एक स्पेशल गाना है जो बहुत खूबसूरत गाना है, मुझे बहुत पसंद है, पार चना दे। आई विश के हम नेक्स्ट गाना जो है हम पार चना दे लगा सकें, क्योंकि पार चना दे इज़ इतना खूबसूरत गाना है और इतना स्पिरिचुअल और इतना गूज़बम्स वाला गाना है कि यू वॉन्ट टू कीप ऑन टू लिसनिंग। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ ऐसे गानों से जो हिस्ट्री को और प्रेजेंट को और म्यूज़िक को और हर चीज़ को इतने खूबसूरत तरीके से टाई कर देते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके अलावा जो उन्होंने डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट जो शोज़ हैं उधर उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए। और क्योंकि नॉट एवरी वन, वही बात है कि हर कोई जो है वो इतना ओपन नहीं होता कि वो आके इस तरह से अपने आप की बात कर सके, या फिर अपने जो अपना जो टैलेंट है उसको अच्छे तरीके से शो कास्ट कर सके। उसके अलावा दे हैव ऑल्सो बिन लाइक अब जो है वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं। दे हैव अपीयर्ड इन डिफरेंट, जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्टूडियो और डिफरेंट सीजन्स, और वहाँ पर आते हैं। और उनका जो पहला गाना वहाँ पर था सीज़न 9 में था, आ जा रहे मोरे सैयाओं के नाम से, और जो ज़ेब बंगश और अली हमजा ने गाया था, और जिसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली थी। और वही बात है कि ये ऐसा गाना है कि अभी भी आप सुनो, वो आई बिलीव के आर्टिस्ट की सक्सेस ही यही होती है कि जब आप एक गाना गाओ और फिर वो गाना जो है हमेशा उसको सुनते रहें और उसको वो कभी बोर ना, क्योंकि कुछ गाने आए माई सेल्फ हियर म्यूज़िक, आई लव म्यूज़िक, और मैं जब सुनती हूँ तो फिर मैं कुछ गाने होती हैं जिनको मैं 2-3 दफ़ा सुनूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ, फिर आई डिलीटेड राइट अवे। लेकिन नूरी के गाने ऐसे हैं कि आप हर वक्त सुनना चाहते हो और हर वक्त उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हो। रिसेंट जो वर्क नूरी का है वो इसी तरह का एक छोटा सा सीजन टाइप है एक ब्रांड के साथ, और वो पॉप रॉक जो है म्यूज़िक है उसको उसके कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और ख़ुद भी उन्होंने उसमें गाने गाए हैं। और कुरतुलैन बलोच के साथ उन्होंने गाना गाया है, और विच हैज़ रिसीव्ड वेल ऑन चार्ट्स। और नूरी हैज़ बिकम अ फेस, नूरी हैज़ बिकम अ ब्रांड। और उन्होंने ना सिर्फ अपनी आवाज़ को कैश किया है, बल्कि उन्होंने अपने जो थीम्स और अपने जो एक आप जो लेकर आते हो, माइंड सेट लेकर आते हो, उसको उन्होंने कैश किया है। और दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न के फ्रॉम द बैंड नूरी, कि आप ये नहीं होता कि आपने सिर्फ अगर इफ़ यू आर म्यूज़िक आर्टिस्ट या फिर इफ़ यू आर एन एक्टर तो बस इसी पे फोकस रखना है, बल्कि आपको अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। आपके पास चाहे छोटा भी सही है, अगर आप 4 लोगों के ग्रुप में भी हो और इससे ज़्यादा नहीं आपका प्लेटफॉर्म, तो आप उन 4 लोगों को ही सही, लेकिन आप उनको कुछ सिखाओ, उनसे कुछ सीखो। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव डन, एंड it is amazing. Thank you so much Amara Mughal for joining. Amara is also an RJ in FM 92.6, or वही बात है कि दिस इज़ बट FM 92.6 इज़ के हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ होते हैं, और
it is a nice experience. Or thank you so much everyone for joining, or thank you so much for listening. Or hum log aaj jaisa aap logon ko pata chal gaya ki aaj hum logon ne musical artist ko discuss kiya hai, to phir hum next time kisi actor ko inshallah discuss karenge. Or hopefully we will enjoy the way we did today. Or time aise jaldi jaldi guzar jata hai, pata bhi nahi chalta, lekin I think that is the beauty of being in conversation. So thank you so much everyone for joining in, thank you so much for commenting and staying connected. Thank you so much for joining. Allah Hafiz.

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: लिसन, लर्न, डिस्कवर With radio station FM 92.6 UCB के दुनिया।
6: मैं काम करके थक जाती हूँ।
7: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
8: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें। इनसे इनके ख्वाब, इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राबता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

0: हम भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: Station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो UCP की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: Ladies and gentlemen, we are live now.
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। पीटीए।
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
1: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मज़ीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से नाराजगी की वजह पूछे तो टाल मटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर ना हो जाए।
1: दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम INL MNC एंड UNODC।
2: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है UCP की, तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बट आईआर में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है?
1: अच्छा, सो मुस्कान, दिस इज़ अ वेरी कोर यू नो इशू और टॉपिक इन आईआर, जो हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पर जिस चीज़ के साथ ग्रैपल करते हैं, और फिर लेटर ऑन आप देखते हो कि हर प्रॉब्लम, हर इशू को टैकल करने के अंदर ये यही क्वेश्चन जो है ये अराइज करता है. बिकॉज यू आर वेरी राइट कि हमें एक डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर क्लियर कट एक गवर्नमेंट नज़र आती है जो कि हमारे लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, एंड व्हेन वी डोंट फॉलो दोज रूल्स तो एक सिस्टम है जो हमें पनिश करता है, यू नो, एक कोर्ट सिस्टम, एक पुलिस फोर्स एटसेट्रा. बट इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, आईआर की एक टर्म है एनआरकी, एंड एनआरकी इज बेसिकली रिफर्स टू दिस फिनोमेना दैट व्हेन देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, यू नो, व्हाट हैपेंस एंड यू नो हाउ डू स्टेट्स इंटरैक्ट. सो आप इसके अंदर देखोगे कि क्लियर कट है कि देयर इज नो अथॉरिटी. यू नो, यू सी स्टेट्स ब्रेकिंग लॉज, एंड यू नो, जिसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं उसको स्टेट्स ब्रेक भी करती हैं, लेकिन they get away with it and you know some get punished and some don't get punished. So aisa koi universal hame system nahi nazar aa raha jo ki ek local government for example karti hai. And yet despite that hum ye bhi dekhte hain ki cooperation ho rahi hai, kuch cheezon ke andar law of making jo hai wo ho bhi rahi hai aur usko follow bhi kiya ja raha hai. To ye jo collective goods problem hai, ye एक सेंट्रल आइडिया है जो कि आईआर ने, आप कह लो इकोनॉमिक्स से भी हमने बोरो किया हुआ है. आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द बिगिनिंग कि आईआर एक बहुत इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. तो जहां पे आप आईआर के बारे में पूछ रहे थे कि आईआर क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो आईआर इंटरडिसिप्लिनरी है. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट आइडियाज को हम इकोनॉमिक्स से भी बोरो करते हैं, सोशियोलॉजी से बोरो करते हैं, साइकोलॉजी से बोरो करते हैं. वो जो मैं अभी आपको इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस बता रही थी, इट इज सो मच लिंक्ड टू साइकोलॉजी एंड psychology of leaders. So coming back to this problem that you just asked about, to wo ek collective goods problem hai jiska ek jiski ek basis economics ke andar bhi hai ki aap kaise ensure karo ki wo cheeze jo sabke fayde mein hai उनको स्टेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि यू नो उनको इसके अंदर कुछ स्टेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट ना भी कर रही, राइट? जैसे फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल देख लेते हैं. अब आप देखते हो कि क्लाइमेट चेंज, यू नो, बिकॉज इट इज सच अ हॉट टॉपिक राइट नाउ एंड इट इज बींग डिस्कस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी रिपरकशंस क्या होंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, एटसेट्रा. सो इट्स समथिंग दैट इफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. अब यू नो द एयर दैट वी is for everybody, right? हम वहां पर तो वो borders नहीं बना सकते air के अंदर जो हमने land के अंदर बनाए हुए. So it's like every country is going to contribute, you know, with the level of pollutions, etc. तो वो हर country उसके अंदर contribute कर रहा है. लेकिन कुछ countries ज़्यादा contribute कर रहे हैं और कुछ countries कम contribute कर रहे हैं. But it is a problem that affects everybody, right? So अगर आप for example कह दो कि नहीं, मैं तो इतनी production नहीं कर रहा and so I don't need to, you know, do something about it, it's not really there because it is going to affect you. आप पाकिस्तान की example देख लो. अभी ये जो हमारे floods आए थे recent, उसके अंदर हमारा यही एक you know हमारा official narrative था that we have not contributed as much to global warming, but you know these floods have been caused by global warming and we have paid the cost of it, in the sense ke kitni lives lose hui hain, kitni hamari economy suffer ki hai. So yahi baat aagi ke chahe koi state uske andar contribute kar rahi ho, chahe na contribute kar rahi ho, aapne wo provide karna hi hai good, aur aapne ensure karna hai ki sab countries jo hain wo uske andar contribute kare, kyunki it is a global thing. And if for example one state says ke nahi ji hum to nahi isko follow karenge, to wahi baat hai, air common hai, it is still going to affect other people. So how are you going to deal with it? Iske bhi basic principles हैं. हम बहुत basic level पे dominance पढ़ते हैं, principle of dominance उसको कहा जाता है, फिर principle of reciprocity है, principle of you know identity है. Briefly I'll just mention कि इन सब के अंदर क्या होता है and then we can move on. Dominance का principle कहता है कि जो powerful states हैं वो less powerful states को you know dictate करती हैं. So जैसे हमें for example different countries कहें कि you should do something about climate change, and because a powerful country is saying it, we will follow it. ठीक है, वो डोमिनेंस हो गई, रेसिप्रोसिटी होगी कि वो हमें दूसरे कंट्रीज को इंसेंटिव दे दें कि जी अगर आप ये करेंगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, सो आप हमारी बात माने हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे. सो वो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है कि तुम भी करो ये, तुम ये चीज करो, मैं ये चीज कर रहा हूँ, तो एंड वी विल कलेक्टिवली यू नो बेनिफिट फ्रॉम इट. और देर इज आइडेंटिटी, यू रियलाइज दैट यू नो देर इज समथिंग विच यूनाइट्स यू, विच अफेक्ट्स एवरीबडी एंड यू कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. सो ये

0: सपोज हमें एट वर्क नजर आते हैं इन एवरीथिंग, इन एवरी इवेंट, इन एवरी इशू दैट इज गोइंग ऑन, एंड सम हाउ वन वे और दी अदर इन प्रिंसिपल्स को यूज करके हमें दुनिया में नजर आ रहा है कि स्टेट्स आर कोऑपरेटिंग एंड इंटरैक्टिंग पॉजिटिवली ऑन वेरियस इशूज दैट अफेक्ट ऑल ऑफ देम.
1: क्योंकि मिस देखें, आपकी बात से मुझे याद आया कि ब्रिक्स में इंडिया, रशिया, ब्राज़ील सब एक साथ मिलके अपनी ट्रेड और इकोनॉमी बेटर करने के लिए काम करें. हालांकि चाइना के इंडिया से प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के रशिया से भी हो जाते हैं, तो लेकिन फिर भी वो अपनी इकोनॉमी बेटर करने के लिए एक साथ मिलके काम कर रहे हैं.
0: सो दैट्स राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देयर इज समथिंग व्हिच इज यूनाइटिंग यू, राइट? कोई कॉमन इंटरेस्ट है जिसको आप फाइंड कर सकते हो, और आप फिर यू नो वन स्टेप फॉरवर्ड, अगर हम एक लिबरलिज्म की थियरी है आईआर के अंदर उसके तरफ आ जाए, तो वो यही कहती है कि कंट्रीज का अपना भी फायदा है कि वो आपस में ट्रेड करें, इस तरह की अलायंसेस बनाएं जैसे कि आपने ब्रिक्स की एग्जांपल दी, बिकॉज यू नो इट इज इन एवरीबॉडीज बेनिफिट. तो अगर आपके कोई एरियाज ऑफ कंटेंशन भी हैं, अगर कोई एरियाज ऐसे भी हैं जिसके अंदर आप क्लैश कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप आपस में इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करोगे, ट्रेड करोगे, उसका फायदा आप दोनों को होगा. सो इट्स नॉट अबाउट यू नो हु गेन्स मोस्ट, इट्स जस्ट अबाउट द fact that you should look there at the fact that you are gaining from it. So isliye hum apni interest ki baat karte hain ki ye bhi hamari interest mein hi hai ki hum aapas mein is tarah ke blocks banaye aur trade kare. This is beneficial for individual states that are a part of it.
1: Thank you so much miss, aapne bahut se points clear kar diye mere bhi, aur I'm sure jo audience hai unko bhi acche se samajh aa gayi hogi. And now we will take another break. Sunte rahiye FM 92.6 UCB ki duniya.

0: Welcome back, everyone. You are listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya. I have Miss Aisha Naseem with me, and we were discussing ke agar state mein koi central authority nahi hai, to phir decision making kaise hoti hai. And we had a very insightful discussion. Hume bahut si cheeze clear hui. Now, Miss, aapne liberalism ki baat ki thi. So, usi se mujhe theories yaad aayi because I have also studied approaches and theories of IR. तो आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी मोस्ट हेल्पफुल है अंडरस्टैंडिंग टुडेज इवेंट्स?
1: सो दिस इज अ वेरी रिलेटिव क्वेश्चन. ठीक है, सो इसका एक कोई जैसे फिक्स्ड आंसर जो है वो नहीं है. सो लेट मी थिंक अबाउट विच थ्योरी फॉर एग्जांपल आई वुड आंसर एज बीइंग मोस्ट रिलेटेबल. व्हाई डोंट यू टेल मी मुस्कान, सिंस यू जस्ट मेंशनड कि आपने भी थ्योरीज पढ़ी हुई है. What is your approach towards different theories that you've studied? And which one do you think is most adequate?
0: Okay, first of all, realism ko bahut zyada relate kiya jata hai anarchy se aur uske core ideas bhi yahi hain. Phir liberalism, in dono ko dominant samjha jata hai. But when I studied constructivism, to tab maine dekha ki wo world ko bilkul objectively nahi dekhta. Ekdam different tarike se perceive karta hai. For example, ki agar aapke samne ek chair hai, to constructivist ke according har kisi ka apna opinion hoga ki aapne ek chair dekhi, but jab aap imagine karoge to aap usko different, har koi differently imagine karega ki koi use moving chair ke taur pe imagine karega, koi classroom chair ke taur pe imagine karega. To ye sirf depend karta hai ki aapne us cheez ko kaise perceive kiya. और इसमें मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे कंट्रीज लाइक जापान और नॉर्वे, वो लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाते. हालांकि बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग वो कहेंगे कि दुनिया में अनार्की है और हमें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ही चाहिए, बट उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी सेट कर लिया. उनके इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स, बिकॉज उनकी एक हिस्ट्री रही है, उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस था हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग्स को लेकर कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स परसीव नहीं करेंगे. आई थिंक कंस्ट्रक्टिविज्म हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि किसी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है और हमें बिल्कुल उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देखना चाहिए.
1: अच्छा, बिल्कुल. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थियरी. सो क्रिटिकल थियरी जो है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, जैसे आपने शुरू किया कि हम ज़्यादा फोकस करते हैं रियलिज्म के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर, एंड इन फैक्ट वी कॉल देम द मेन स्ट्रीम थियरीज. सो वो वही थियरीज हैं जो कि बहुत अरसे से IR का पार्ट हैं और उनको बहुत अरसे से, मतलब सेंचुरीज ओल्ड इनके ट्रेडिशंस हैं, इनकी रूट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, और उन्हीं को फिर हम अडॉप्ट करते हैं इन एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड. तो मेरी जो इसके अंदर एक अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. आई फील यू नो दैट क्रिटिकल थियरी इज सॉर्ट ऑफ मोर एडिक्वेट. अब उसके देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट. मुझे लगता है रियलिज्म और लिबरलिज्म जो है वो तो बहुत, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया है कि वो बहुत एक एक्सेप्ट कर लेती हैं सिस्टम को एज इट इज और फिर उसको एक्सप्लेन करती हैं. दे डोंट आंसर दिस बेसिक क्वेश्चन कि वो सिस्टम आया कहाँ से. ठीक, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे, कुछ कंट्रीज जो हैं वो पावर के पीछे हमें भागते हुए नजर आते हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं बिल्कुल नहीं नजर आते. देर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, ऑन देयर इंटरनल सिस्टम्स, ऑन डेवलपमेंट, एंड दे प्रायोरिटाइज दैट ओवर फॉर एग्जांपल मिलिट्री एंड डिफेंस. सो देन एट द सेम टाइम यू सी डिफरेंट अदर कंट्रीज विच आर ओनली रनिंग आफ्टर यू नो मैक्सिमाइजिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज. सो वॉट एक्सप्लेन्स दैट? इसका मतलब है कि हर स्टेट सेम नहीं है और हर स्टेट जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट जो है या फिर डिफरेंट तरीकों से उन इंटरेस्ट को फॉलो कर रही. तो मुझे लगता है कि हम सबको यू नो फ्रॉम द ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज को, यू नो पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, वी नीड टू फोकस मोर ऑन क्रिटिकल थियरी एंड वी नीड आर स्कॉलर्स, आर रिसर्च टू अडॉप्ट दैट थियरी इज वेल. क्योंकि क्रिटिकल थियरी बेसिकली क्या करती है कि इट आस्क्स दीज क्वेश्चंस के किसकी इंटरेस्ट सर्व हो रही हैं, किसके पास पावर है, किन की वॉइसेज हैं जिनको साइलेंस किया जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम इस दुनिया को डिफरेंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि एक सिस्टम मोर इक्वालिटी के ऊपर फॉर एग्जांपल बेस्ड है, जहाँ पे जस्टिस है या नहीं. तो आई बिलीव दैट इट गिव्स अ मोर ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर एंड इट आंसर्स अ लॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी IR आई कहाँ से है और ये प्रिंसिपल्स आए कहाँ से जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू नो टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. So you've already mentioned constructivism. I will just go one step ahead and I will mention post-colonialism. And post-colonialism is a theoretical framework which I have adopted in my research. So what it basically says is ki agar aapne duniya ko abhi understand karna hai to aap history ko dekhein, aap legacies of colonialism dekhein, which you know all of us actually in Pakistan are aware of, because you know we have been a formal colony ourselves. British jo the wo rule kar rahe the Indian subcontinent ke upar, aur ek set kism ka pattern jo tha wo unhone introduce kiya, aur uske baad wohi system jo hai wo humne follow kiya even when they left. So what post-colonialism says is that it is very relevant ki aap international politics ko un legacies ke through explore karo jo colonialism aur imperialism ki hai. So they are not just something of the past, they shape today's global inequalities, patterns of conflict and all the categories that we even used to study aaya. जैसे आप देखो डेमोक्रेसी के ऊपर कितना फोकस है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट्स जस्ट वन एग्जांपल. आप और देखो हम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इकोनॉमिक यू नो कैपिटलिज्म के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं एंड वी यूजली डोंट नो वेयर दीज आइडियाज आर कमिंग फ्रॉम. और कुछ जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट समहाउ हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं एंड वी डोंट लुक एट दोज हिस्टोरिकल things which have been a part of our history and which have been a part of you know our development, and then we can't really understand this. Theek hai, so ye jo international system hai isko post colonial scholars kehte hain ki this has been built through processes of conquest, resource extraction, cultural domination, etc. Just briefly agar iski hum koi example dekh le to aap dekh sakte ho hum acha Israel Palestine war ko hum dekh rahe hain, agar hum usko sirf as a security issue ek to explain kar sakte hain ki you know it is it just a security issue or is there you know a deeper sort of a problem or underlying issues there. Jaise I will link it you know with the colonial history, in the sense ke division of land kaise hui, displacement of population kaise hui, wo sari Balfour Declaration ke sath linked hai jo ke colonial practices hain British ki. So you know you need to understand ke ye kis tarah se problems develop hui. Isi tarah agar aap अफ्रीका को देखो, अफ्रीका यू नो इज अ वेरी रिच कॉन्टिनेंट इन द सेंस ऑफ दैट इट हैज अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, येट आप देखते हो कि इट इज द पुअरेस्ट यू नो मोस्ट अनस्टेबल मोस्ट यू नो वीकली गवर्नड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो पोस्ट कोलोनियलिज्म हमें ये बताएगी कि यू नो कोलोनियल पावर्स ने कैसे रिसोर्सेज वहां से एक्सट्रैक्ट किए और फिर किस तरह से अपने आप को डिवेलप किया. एक इतनी फेमस बुक है हाउ यूरोप अंडर डिवेलप्ड अफ्रीका. सो इट इज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स दैट यू नो ये जो रिसोर्स कर्स है अफ्रीका की, it is not just something which is you know brought upon them by themselves, it is something which has been imposed on them, it is a post-colonial legacy of exploitation or underdevelopment. Aur ye hame kya cheeze hain, ye sari examples batati hain ki there is a way forward. But thodi si ek critical theory ki ye advantage hai ki wo aapko ye bhi batati hai ki hum system ko theek kar sakte hain aur kaise kar sakte hain. So for example post-colonialism kahegi ki aap decolonize kare, जो आप लोगों के लिए नई चीज़ें वर्क कर रही हैं उनको छोड़ें और जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उनको अडॉप्ट करें. इवन लाइक माय करंट रिसर्च, जस्ट ब्रीफली आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई एम लुकिंग एट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम अ पोस्ट कोलोनियल पर्सपेक्टिव. तो मैं पाकिस्तान को स्टडी कर रही हूँ, तो मैं ये डिस्कवरिंग दिस एंड आई एम फाइंडिंग आउट मोर अबाउट इट एवरी डे कि हमारे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, फ्लड मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, वो कोलोनियल टाइम्स से चलते आ रहे हैं और हमने उनको चेंज नहीं किया है और हम अभी तक उसी तरह से मैनेज करते हैं वाटर को जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज हमें बता के गई. बट दे वर देयर फॉर अनदर पर्पस एंड वी आर अ स्टेट एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज पीपल, यू नो दे वर देयर फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा, जो भी हम एक टेम्प्रेरी रूल के साथ एसोसिएट करते हैं. सो द पॉइंट इज कि अगर आप इन चीज़ों को रियलाइज करो और स्टडी करो तो आप लॉज को, पॉलिसीज को, इंस्टीट्यूशंस को डीकॉलोनाइज करो और आप उन प्रोसेसेस की तरफ जाओ जो आपके कॉन्टेक्स्ट की तरफ ज्यादा सूटेड है. सो देयर इज होप फॉर अ चेंज.
0: थैंक यू सो मच मिस. और आपकी बातों से मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में हर پرابلم کے پیچھے کلونیل لیگیسی ہے, بیکاز ایوری کنٹری واز اے کلونیل ایٹ سم ٹائم.
1: اٹس ناٹ دیٹ, یو نو, لیٹس ناٹ ٹیک دی ایگزامپل اور جسٹ لرن دی ایگزامپل اور ٹیک اوے کہ یہی ہے کہ ساری غلطی ان کی ہے. آئی تھنک دیٹ وڈ آلسو بی رانگ. وی شوڈ ریئلائز آئر اون مسٹیکس ایز ویل, بٹ آئی مین دیر از اے لیگیسی اینڈ اٹ شوڈ ٹیل یو کہ آپ کیسے اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ ڈیفلیکٹ کر دیں بلیم سارا, دیٹ وڈ آلسو بی رانگ.
0: تھینک یو سو مچ مس, اینڈ آپ کے اتنے ڈیٹیلڈ آنسر سے مجھے ریئلائز ہوا کہ کریٹیکل تھیوری از آلسو ویری امپورٹنٹ, اینڈ پوسٹ کلونیلزم آلسو ہیلپس اس انڈرسٹینڈ ویری ڈیٹیلڈ پرابلمز آف آئی آر, ناٹ جسٹ بیسک تھیوریز. تو تھینک یو سو مچ ایوری ون فار لسننگ ٹو اس, اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل اینڈ گریٹفل ٹو مس عائشہ نسیم ٹو بینگ آور گیسٹ فار ٹوڈے. اٹ واز ویری ایکسائٹنگ اینڈ لرننگ ٹو ہوسٹ ہر. وی ول میٹ یو نیکسٹ ٹائم ود اندر گیسٹ. سو تھینک یو سو مچ فار لسننگ ایف ایم 92.6 UCB کی دنیا. اللہ حافظ.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरोड़ताल सुरोड़ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP, FM 92.6, UCP Ki Duniya.

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP Ki Duniya. Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की. ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की. तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।
1: फन, एंटरटेनमेंट, न्यूज, नॉलेज 24/7 ओनली ऑन यूसीपी एफएम 92.6। यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।